0: ये है असली विंडोज का असली ऑफर। खरीदिए स्टिकर वाला विंडोज XP PC SMS असली 7272 पे।
1: प्रेजेंटिंग लिवॉन सिल्की ह्यूज, जो कलर्ड और डाइड बालों की रफनेस दूर करे, उन्हें बनाए स्मूथ और शाइनी।
2: बजाज वाटर हीटर्स, झटपट गरम गर्मा गरम।
3: एवरी मोमेंट मोर स्पेशल विद टाटा टी गोल्ड।
4: मम्मी भैया डॉक्टर है, उड़ नहीं पाएंगे।
5: खजुराहो शिल्पकारी देखो, भीमबेट का कलाकारी देखो, कट्टर प्रेम पुजारी देखो, आंखें नीचे नीचे देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो।
6: उसमें से निकला कछुआ, पर जय हो पंखों वाली मैया, तूने उसे भी गोद लिया।
5: सतपुरा की रानी देखो, भोपाल राजधानी देखो, राजधानी में झील देखो, बहता पानी झील देखो, धर्मों की महफिल देखो, हिंदुस्तान का दिल

अरे आप भी डरते हो क्या? आप किससे डरते हो? बकवासपन, रूहें, हवा के झोंके हैं, हमारे दिल के सुनहरे धोखे हैं। डरो मत, क्या समझे?

0: बोलो बच्चों, अब क्या है?
1: अब हम नहीं डरते, हम तो शेर बनते।
0: शाबाश शाबाश, लाडलो सबके लाडलो, भागे ये भूत भी तुम जैसे शेर शेर।